तू नेचल करता सोई तुद आपे भावै सोई वरतै जी तू आपे करै सोई तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावै करते के जी जो सब सह का जानो आसा महला चौथा तू करता सच्यार मैडा साईं

तू कर कर वेखै जानहि सोइ। जान नानक गुरमुख प्रगट होए, आसा महला पहला। तित सरवरड़ै पहिले निवासा, पानी पाव कितनहि किया। पंक जो मोह पग नहीं चाले, हम देखा तह डूबी अले। मन एक न चेतस मूड मना, हर

नमस्कार तिसही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी सेवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पलमो बद कियो काट काट के अंतर की जान भले बुरे की पीर पहचान चीटी ते कुंचरे सथूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने काट काट के पट पट की जाने जब उदकर्ख करा करतारा प्रजा तरत तब दे अपारा जब या कर्ख करत हो कब हूं तुम मैं मिलत दे तर सब हूं जेते बदन श्रेष्ठ सब तहारा आप अपनी बूझ उचारे तुम सब ही ते रहत निरालम जानत वेद भेद अर आलम

कहूँ फूल राजा हुए बैठा, कहूँ सिमट भयो शंकर कैठा, सिगरी सृष्ट दिखाए अचंभव, आज जुगाद स्वरूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार सिख संगरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता। जेस तुहि तब सरणी परे, तिनके दुष्ट दुखत हुए मरे, पुरख

सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहि ने हरि होता के ताप तन कुमै हरि हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट।

0: हर कृपा कर बनवाली जानो नानक संगत साधु हर मिलो हम साध जना पग राली वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह
1: वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु की साजी निवाजी सतसंगत जियो वडभागे हो जो कि शाम समय खालसा दीवान सोसाइटी गुरद्वारा साहिब सुख सागर विखे हाजरियां भर के अपने जीवन नूं सफला कर रहे हो। सतगुरु जी कृपा करन इसे तरह हाजरियां भरन दा बल बख्शिश करन। समूह संगत दे चरणां विच बेनती है कि धन श्री गुरु रामदास साहिब जी महाराज तिन्हां दे प्रकाश पुरब नूं समर्पित बाल राग दरबार जो कि 17 अते 18 अक्तूबर शाम समय गुरद्वारा साहिब विखे सजाए जाणगे वध तों वध हाजरियां भर के सतगुरां दीआं खुशियां प्राप्त करनियां जी। 17 अते 18 अक्तूबर नूं बाल राग दरबार धन गुरु रामदास साहिब महाराज जी दे प्रकाश पुरब नूं समर्पित सजाए जाणगे। दूसरी बेनती जो सालाना गुरबाणी कंठ मुकाबला है जो कि 24 अक्तूबर नूं है, आप सब संगतां वध तों वध अपने बच्चियां नूं इस मुकाबले लई रजिस्टर करवाओ। गुरद्वारा साहिब दी वैबसाइट उपर जा करके आप जी बच्चियां नूं रजिस्टर करवा सकते हो। रजिस्ट्रेशन दी आखिरी मिति 18 अक्तूबर है, ये नोट करना जी। आओ हुण जो बच्चे गुरद्वारा साहिब विखे गुरबाणी कीर्तन की सिखलाई प्राप्त करते हैं उन्हां पासों पावन गुरबाणी कीर्तन सरवण करिए जी।

समस्त प्राण है सदा सर्वसाध है समस्त सलाम है सदा भला काम है निर्वार स्वरूप है गौर है अनूप है ओंगाद रूपे अनाद स्वरूप है अनंगी अनामे त्रभंगी त्रकामे त्रभर्गं त्रबादे अगंजी अगादे सुभंग सर्वभागे सुसर्वानुरागे

ऐसे सुबस बतायो साच कहूँ सन्हो सबै जिन प्रेम की आत नहीं प्रभायो काहू लै पाहन भूतरयो सिर काहू लै लिंगरे लड़कायो काहू लखियो हर बाची दिशा मैं काहू पछा को शीशन मायो को बतान को बूजत है बशकू मृतान

एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो शरनाई। एक अरदास पाठ कीरत की

0: प्रकम्प सवाया
1: मिथ्या मोमे ममता माया
0: मिथ्या राज यौवन धन माल
1: मिथ्या काम क्रोध विकराल
0: मिथ्या रथ अस्ति असब वस्त्रा
1: मिथ्या रंग संग माया पेट हस्ता
0: मिथ्या त्रोह मोह अभिमान
1: मिथ्या आपस ऊपर कट गुमान
0: अस्थर भक्त साध की सरण
1: नानक जप जप जीवे हर के चरण
0: मिथ्या सर्वन पर निंदा सुने
1: मिथ्या हस्त पर दर को हिरे।

0: प्रसाद छत्तीस अमृत खाए
1: तिष्ठा कर को रख मन माए
0: प्रसाद सुगंध तिन लावे
1: इसको सिमरत परम गत पावे
0: प्रसाद बसे सुख मंदर
1: इसे त्याए सदा मन अंदर
0: प्रसाद ग्रह संग सुख बसना
1: आठ पैर सिमरो तिस रसना
0: प्रसाद रंग रस भोग
1: नानक सदा त्याए त्यावन जोग
0: प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे
1: इसे त्याए

0: मंत्रिस्त्रावकों कबूना विसारी
1: ये प्रसाद बाग बेलखुतना
0: राग प्रोए प्रव्याप्रे मना
1: जिन तेरी मन बंत बनाई
0: उठत बैठत सत्य से ते आई
1: सेते आए जो एक अलख है
0: ईहा हुआ नानक तेरी र

0: सुहागन गाओ
1: प्रभु कृपाते हुए प्रगास
0: प्रभु दयाते कमल विगास
1: प्रसन्न बसे मन सोए
0: प्रभु दयाते मति उत्तम होए
1: सर्वनदान

0: पर साथ भिख्या पर हरे
1: मन की वासना मन से टरे
0: इंद्री चित पंच दोख ते रहत
1: नानक कोट मदे को ऐसा परस
0: वैष्णो सो जिस ऊपर सुपर सन
1: विसर की माया ते होए पिन
0: कर्म करत हो वे नह कर्म
1: इस वैष्णो का निर्मल धर्म
0: बाहु फल की इच्छा नहीं बाछे
1: केवल भक्त की तन संग राचे
0: मन तन अंतर स्मृत गोपाल
1: सब ऊपर होवत कृपाल
0: आप दृढ़ है अवर है नाम जपावे
1: नानक हो वैष्णो परम गत पावे
0: भगवती भगवंत भक्त का रंग
1: सकल त्याग है दुष्ट का संग
0: मन ते बिनसे सगला परम
1: कर पूजे सगल पार ब्रह्म
0: साध संग पापा मल खोवे
1: इस भगवती की मति उत्तम होवे
0: भगवंत की टहल करे नित्य

0: चंद व्यवहार
1: अब
0: हूँ बेता ब्रह्म विचार
1: नानक आप मिलावन हार
0: अब हूँ नृत्य करे बोपात
1: अब हूँ सोए रहे दिन रात
0: अब हूँ महाक्रोध विकराल
1: अब हूँ सब की हो दरवाल
0: अब हूँ होए बहे बड़ राजा
1: अब हूँ बेकारी नीच का साजा
0: अब हूँ आपकी रत में आवे
1: अब हूँ पला पला कहावे
0: ज्यो प्रभ राखे तिब ही रहे
1: वर पर साल नानक सच कहे
0: अब हूँ होए पंडित करे बख्यान
1: अब हूँ मोहन तारी लावे ध्यान
0: अब हूँ तट तीरथे स्नान
1: अब हूँ सिद्ध साधक मुख ज्ञान
0: अब हूँ कीट हस्त पतंग होए जिया

0: छूटै।
1: सहज खटे लख को उठतावे,
0: तृप्त न आवे माया पाछे पावे। न तृप्तावे खाका मरे,
1: बिना संतोख नाही को राजे,
0: सपन मनोरथ व्यर्थ सब काजे।
1: नाम रंग सर्व सुख होए,
0: बड़ भागी किसे प्राप्त होए।

0: तब जाए।
1: संत के दुख नीच न जाए,
0: संत दुखी का था को नाहे।
1: नानक संत पावे ता होई भी गत पाए,
0: संत का निंदक मा अतताई।
1: संत का निंदक टिकन न पाए,
0: संत का निंदक मा हत्यारा।
1: संत का निंदक परमेश्वर मारा।

0: जिसकी जानो तृष्णा बूझे। सर्व रोग त्यो हर जन रहत, ग्रस्त में सोई निर्वाण। जिसकी कटिए जम की फासा,
1: ब्रह्म की जिस मन
0: पूख, नान

0: अपने कार्य में आप समाया, गुर प्रसाद तत् सबूजिया,
1: देखो तब सब कुछ मूल,
0: नानक सो सुखम सोई असूल,

0: नो विस्तार
1: अविनाशी एक अहंकार
0: नाना चरित करे खिन माहे
1: पूर रहो पूर सब ठाए
0: नाना विध कर बनाए
1: अपनी कीमत आपे पाए
0: सब कर तिसके सब तिसके ठाओ
1: जप जप जीवे नानक हर नाओ
0: नाम के तारे सगले जंत
1: नाम के तारे खंड ब्रह्मांड
0: नाम के तारे सिमरत वेद पुराण
1: नाम के तारे सुमन ज्ञान ध्यान
0: नाम के तारे आगास पाताल
1: नाम के तारे सगले आकार
0: नाम के तारे पूरी सब पवन
1: नाम के सांगी उदरे सुन सवन
0: कर कृपा जिस अपने नाम लाए
1: नानक चौथे पद में सो जन गत पाए
0: रूप सत जाका सत स्थान
1: पुरख सत के बल प्रधान
0: करतूत सत सत जाकी बाने
1: सत पुरख सत माए समानी
0: सत कर्म जाकी रचना सत
1: मूल सत सत उत्पात
0: सत करनी निर्मल निर्मली
1: जिसे बुझाए तिसे सब फले
0: सत नाम प्रभु का सुखदाय
1: विश्वास सत नानक गुरते पाई
0: सत वचन साधु उपदेश
1: सत ते जन जाके हृदय प्रवेश
0: सत नित पुरजे जे कोए
1: नाम जगता की गत होए
0: आप सत की असब सत
1: आपे जाने अपनी मित गत
0: जिसकी सृष्टि करने हार
1: अवर न बूझ करत विचार
0: करते की मित न जाने किया
1: नानक ज्योतिष पावे सो भरतिया
0: विस्मन

0: सत गुरसे की करे प्रित पाल
1: सेवक हो गुर सदा दयाल
0: सिख की गुरदुर मत मल हिरे
1: गुर वचनी हर नाम उचे
0: सत गुर सिख के बंधन काटे
1: गुर का सिख विकार ते हटे
0: सत गुर सिख को नाम तन दे
1: गुर का सिख बड़ भागी हे
0: सत गुर सिख का हलत पलत सवारे
1: नानक सत गुर सिख को जी नाल समारे
0: गुर के ग्रह सेवक जो रहे
1: गुर की आज्ञा मन में सहे
0: आपस को कर कछु ना जनावे
1: हर हर नाम हृदय सत्यावे
0: मन बेचे सत गुर के पास

0: भोग वडियाई
1: हर के नाम की कथा मन पाई
0: भोजन का पर संगीत
1: रसना जगती हर हर नीत
0: परी सो करनी सो

अनेक रंग नाना दृष्टा है। देही में इसका विश्राम कैन जाये चार जग समाद। नानक तिलजन सोजी पाए कटकट व्याप रहा भगवंत। सर्व लोक पूरन प्रतपाल जैसी आज्ञा तैसा कर्म। चार कुंड तै दिशे समाए

0: उपदेश
1: पूरे गुरकासन उपदेश
0: बार ब्रह्म नित्य कर पेक
1: सास सा सिमरो गोविंद
0: मन अंतर की उतरे चिंत
1: आस अनित्या गोता रंग
0: संत जना की तोर मन मंग
1: आप छोट बेनती करो
0: साध संग
1: हरतन के पर लियो पंडार
0: नानक गुर पूरे नमस्कार
1: खेम कुशल सहज आनंद
0: साध संग पाए परमानंद
1: नरक निवार उदारो जियो
0: गुण गोविंद अमृत रस पियो
1: चित चित वह नारायण एक
0: एक रूप जाके रंग अनेक
1: गोपाल दामोदर दी

0: आवत होत उदार
1: आप तरे लोकै निसार
0: सफल जीवन सफलता का संग
1: जाके मन लागा हर रंग
0: जय जय शब्द अनाहद वाजे
1: सुन सुन अंग करे प्रभु गाजे
0: प्रगटे गोपाल महंत के माथे
1: नानक उतरे तिनके साथे
0: सबन जोग सुन सरनी आए
1: कर कृपा प्रभु आप मिलाए
0: मिट गए बैर पे सब रेन
1: अमृत नाम साध संग लेन
0: सुख प्रसन्न पे गुरुदेव
1: पूरन होई सेवक की सेव
0: आल जंजाल विकार ते रहते
1: राम नाम सुन रसना कहते
0: कर प्रसाद दया प्रभु तारे
1: नानक निभी केप हमारी
0: प्रभु की उस्तत करो संत मीत
1: सावधान कागर चीत
0: सुखमणि सहज गोविंद गुण नाम
1: जिस मन बसे सोत निदान
0: सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए
1: प्रदान पुरख प्रगट सब लोए
0: सब ते ऊंच पाए स्थान
1: बोर न होवे आवन जान
0: हर तन खाट चले जन सोए
1: नानक जिसे प्राप्त होए
0: खेम सात रित नव निद
1: बुद्ध ज्ञान सर्व ते सिद्ध
0: विद्या तप जो प्रभु ध्यान
1: ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान
0: चार पदार्थ कमल प्रगास
1: सबके मन सगते उदास
0: सुंदर चतुर तत्व का